0: कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: मैंने रिसेंटली एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा जर्नल पढ़ा जिसमें राइटर ने लिखा था कि मैं ऑफिशियली बड़ा होने से रिजाइन करता हूँ और वापस एक 8 साल के बच्चे वाली जिंदगी जीना चाहता हूँ। वो जिंदगी जब लाइफ बेहद सिंपल थी, फुल ऑफ कलर्स, लॉट्स ऑफ फन, व्हेन लाइफ टर्न्ड इट लुक्ड लाइक अ फेयर और हर इंसान अच्छा और ऑनेस्ट लगता था। कोई डिप्रेसिंग न्यूज, बीमारी, गॉसिप नहीं थी, तो बस प्योरिटी, स्माइल्स एंड ड्रीम्स। याद आ गए ना वो सारे पुराने दिन, क्योंकि आज भी उम्र चाहे हमारी बढ़ गई है लेकिन दिल में एक बच्चा तो अभी भी कहीं छिपकर बैठा।

0: ਓ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀਰੇ, ਪਰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ।
1: किसी ने राइटर एर्मा से पूछा कि अगर उन्हें लाइफ फिर से मिली तो वो कैसे जीना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा कि अगर सच में ऐसा हुआ तो वो बात कम करेंगी, सुनेंगी ज्यादा, किसी भी चीज के टूटने पर चिल्लाएंगी नहीं सब पर, और अपनी जिंदगी में सॉरी, थैंक यू एंड लव यू इन शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहेंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट, हर एक मिनट, हर एक लम्हे को फील करके जीना चाहेंगी। वेल, आई एम श्योर कि अगर आप भी एर्मा की बातों के साथ इत्तेफाक रखते हैं तो आप अपनी लाइफ में ये चेंजेस आज से ही लानी शुरू कर देंगे बिफोर इट गेट्स टू लेट।

0: ਆ ਕੁੜੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
1: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
2: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ।
3: अक्सर हम लोग एक भ्रम, एक अलग ही दुनिया में जीते हैं, जो सच्चाई और रियलिटी से बहुत अलग है। माय वर्ल्ड, माय हैप्पीनेस, माय लाइफ, इनफैक्ट माय, मैं, मेरा, यहीं तक सीमित है हमारी दुनिया। पर जरा सोचें कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। डूबती हुई कश्ती को पहुंचा दो किनारे पर, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा।

0: ऑफ पंजाबी चुटकले कहानियां ते साडियां चटपटियां गल्लां
1: आहे संडे यार रोज रेडियो ते
2: सुनो साडे YouTube चैनल कल्चर ऑफ पंजाब ते।
3: जब हम लोग अपने पर टाइम स्पेंड करने की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ वो टाइम इंक्लूड करना चाहते हैं जो हम अपनी हॉबीज पर स्पेंड करते हैं, साथ ही साथ कुछ वक्त बिताएं सच में अपने सेल्फ एनालिसिस पर भी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें खुद को अपनी वीकनेसेस का पता ही नहीं होता और अगर ऐसा है तो सुधार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, क्योंकि जिंदगी भर बस यूं ही गलती करते रहे, धूल थी चेहरे पर और आईना साफ करते रहे।

0: कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज।
1: कल्चर ऑफ पंजाब दे चुटकले कहानियां ते साडियां चटपटियां गल्लां
2: आहे संडे यार रोज रेडियो ते
3: सुनो साडे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ पंजाब ते।
4: स्मार्टली जीना है तो जिंदगी में कोई मकसद या एम जरूर होना चाहिए, और जो लोग अपनी जिंदगी का मकसद नहीं जानते हैं, जिंदगी उनके लिए सिर्फ एक कुआं है जहां आज नहीं तो कल वो गिरेंगे ही गिरेंगे। और सिर्फ एम नहीं, उस एम को अचीव करने के लिए चाहिए ढेर सारा पॉजिटिव एटीट्यूड, बहुत सी पॉजिटिव सोच, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब इस बात से सहमत होंगे कि मेरी तकदीर को बदल देंगे मेरे पुख्ता इरादे, मेरी किस्मत नहीं मोहताज, मेरे हाथ की लकीरों की।

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: हम सब कहते हैं कि हम अच्छे से जीना चाहते हैं, पर कभी सोचा है कि जी क्यों नहीं पाते? क्योंकि मन भरा हुआ है लालच के साथ। ये दिल मांगे मोर मोर एंड लॉट्स मोर। जरूरतों को तो किसी हद तक पूरा किया जा सकता है, पर ग्रीड को नहीं, बिकॉज दैट्स द कैंसर ऑफ द सोल। लालच रिश्ते बिगाड़ देते हैं। तो जब भी मन में कुछ जरूरत से ज्यादा पाने की तमन्ना जागे, तो अपने आप से सिर्फ 3 सवाल पूछे, बट कैन आई अफोर्ड इट? क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सपोज आई गेट इट, विल दैट गिव मी पीस ऑफ माइंड?

0: कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज।
1: मिट्टी है पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग, खुशबू है हर दौर को महका जाएंगे हम लोग, हम रूहे सफर है हमें नामों से न पहचानो, कल किसी और नाम से आ जाएंगे हम लोग। है ना हकीकत कि चाहे हमारे वजूद का एक अहम हिस्सा है हमारे नाम, फिर भी गौर से देखें कि कितने नाम आए और चले गए, बस जिंदा है सिर्फ वो ही नाम जो औरों को जीवन दे गए। कभी सोचें कि ऐसे नामों की लिस्ट में हम क्यों नहीं आए।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: चाहे हम लोग जानते हैं कि हम औरों के साथ बहुत कुछ गलत कर जाते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनइंटेंशनली या जानबूझकर, पर फिर भी मटेरियलिस्टिक इंसान है, आज के युग के इंसान है, मानेंगे थोड़ी। मैं तो सिर्फ ये मानती हूँ कि ना गलत ये दुनिया है, ना है किस्मत गलत, जो लगे गलत सब कुछ तो है नजरिया गलत। है खुदा ने दिया जिंदगी में जो कुछ खास, उसको यूं ही गलत कह के गंवाना, ये है गलत।

हर दिन हम लोगों का अलग मूड होता है. कुछ दिन तो ऐसे होते हैं जब हम बहुत जीना चाहते हैं, और कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं व्हेन वी जस्ट फील लाइक डाइंग. लाइफ को देखने का अलग पर्सपेक्टिव हर अलग दिन के साथ. जब बहुत नेगेटिव फील करें तो आस ढूंढें. और आपको पता है कि ये जो आस होती है ना, ये अंधेरे से शुरू होती है, और एक बहुत जिद्दी टाइप की आस होती है जो अगर आपके नजरिए का हिस्सा बन जाए तो फिर

read a very interesting article recently about the journey of life. राइटर लिखते हैं कि उन्होंने बहुत ट्रैवल किया, दूर अलग प्लेसेस में गए, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश की, हर दिन नए लोगों से मिले और फिर शाम हो गई। वो सड़क के एज पर खड़े थे, लग रहा था कि जैसे सफर खत्म होने को है, पर इतना ट्रैवल करके भी राइटर को वो नहीं मिला जिसे वो ढूंढ रहे थे। पता है वो क्या था? उनकी जिंदगी।

आप खामोशी में भी खामोशी से प्यार फील कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि प्यार तो कभी खामोश होता ही नहीं। एक जेंटल सी स्माइल, अ वार्म एंड टेंडर टच, कुछ अल्फाज एनकरेजमेंट के, खासकर उस समय जब आपको लगता है कि आप कोप नहीं कर सकते हैं, और अ वेरी सिंपल फ्रेज, लव यू, जब एक्चुअली आपके पास कोई भी नहीं होता, जब एक्चुअली आप सिर्फ उन्हें ख्यालों में ही मिलते हैं। ऑब्वियसली लव इज नेवर साइलेंट बिकॉज इट हैज सो सो सो मच टू से एंड गिव अवे।